0: अप्रिन्ट
1: मेटल फोटो प्रिन्ट
0: प्रोप्राइटर
1: प्रकाश श्रेष्ठ
0: सेवा स्टेशनरी एन्ड सप्लायर्स
1: कन्ट्याक्ट नम्बर 9841924274।

0: ओहो, सुल्टिनीहरू पट्टन त गफै दिएर त हो नि आजकल, साँचो बोले त कामै छैन। ल अब घान्द्रुङ ढुलौ।
1: मजा।

0: पान गर्न छोडौं, स्वस्थ जीवन बाँचौं।
1: नेपाल सरकार विज्ञापन बोर्ड।
2: Let's go. This is your radio. This is LMFM 89.6 MHz. 89.

Elimbu FM 89.6 MHz. हेलम्बु FM 89.6 MHz मा अब तपाई सुन्न सक्नुहुन्छ हेलम्बु खबर।

0: Colombo FM 89.6 MHz.
1: अब रङ फेसुमुला रेडियो कार्यक्रम स्पार्क माई फेथ नला विश्वासी चमक बसुगो आनन्दला प्रलोभनरी थातागै जयमसी तथा नमस्कार लासो फ्याफुल्ला स्पार्क माई फेथ तथा नला विश्वासी चमक बसुगो अङ्क 42 रङिद स्वागत मुला ङा वियोग तामाङ तिनी ङा बेनन्द दातेन सन्तुष्टि पिण्ड ताम गदेरा लिचा ग्लगपमा थप सतर्क चिवारी प्रोत्साहित लबरी से मुला पनुश्वर ग्याम हावा ताम गदेसे ब्लुङ ग्याम योनन ताम मुला थेन्दे सैतांसे याङ द प्रलोभन रि सोचिला ताम गदेसे क्षणिक आनन्द बावरी हम्ला तसै सैतांसे याङ द पिण्डा तामसे भविष्यरी परिणाम कादे बाबाला उत्पत्ति तीन अध्यायला छ जब मिङ कोलासे थे दोङला फल चाबरी ज्यावा देन च्याबरी रहर लाग्दो देन बुद्धि याङ गरी थे दोङला चाह लदोसेला बिसी म्राङजी तब थेसी थे दोङला फल थासी चाजी थेन्दे राङला खेप्पदा एन पिन्जी थेन्दे थे एन चाजी परमेश्वर जे हम्बदा चु फल चाबरी निषेध लस्युबा मुबा यद्यपि हब्बसी फल चाबरी निर्णय लासी तिग्द विषम चु लानन जबा म्राङ मुबा थेन्दे थेसी चुदा थेरङबा सेला रूपी च्याजी जे से थेदा आनन्द पिन्ला हाजीबाई से जेबा न्यानमुला थेन्दे जेबा म्राङमुला बिबरी थे जेबा मुबा बिबा आतामुला लुइरी लानन से गदे मुला जुन जेबा म्राङमुला जब स्वाद पिन्मुला थेन्दे जेबा महसुस लामुला देन कि रङ्ना लाग्री जेबा अरे उदाहरण लागिरी केक आइसक्रिम कुकिज देन ड्यू कोक बेनला स्वाद लानन जबा तामुला तसै थेनिक देशे याङला शरीरदा याङला ज्यानदा जबा स्वास्थ्य थानभरी हाम्बा शोभा उचित पोषक तत्व गदे आपिन्ब मुला जब याङ थे स्वादिष्ट चबसे गदे लालन चमुला थेनिक देशे याङदा जबा महसुस लाबरी अहम लिच्छला रोग विकास तला अर्कोतर्फ न हरेक छोरी नही चम्चा स्याउ साइडर भिगर तुङला चुला स्वाद आजेबा तासै स्वास्थ्य लाभदायक तामुला हिब्रू 13:4 बिहा चा जम्मन मिला ओन्छारी जाबा तदौला ओछे मिङ हेम्बो नुवाङ्री खामै आजेबा ताबरी आता तिग्द विषम आजेबा बानी बेहोर पोसी छन्दो गदेला मृङ हेम हेम रोन छम ब्रिन्जी रब गदेदा परमेश्वर जे सजाय पिन्न अर्को मिदिन नुङबला जे छे दत्तिन आनन्द पिन्मुला तसै ब्या आरेबा रेम्बो कोला गदेदेन मृङकोला नुङ यौन सम्पर्क लमा चुला पर्णम लानन नुप्पा ताबरी हम्ला रेम्बो कोलेदेन मि कोला सँगै फ्लाकिने नुङजी विषम लेबा सम्भावना तामुला हेने गदेदेन तिजी मौसम गर्भधारण ताबरी हम्ला भावनात्मक क्षति तासिला निश्चित मुला मृङकोलाला आत्मसम्मान माबरी हम्ला थेन्दे चु व्यवहारला लागिरी परमेश्वर प्रति जवाब दे ताला थे बेनन कारण ब्या फिर्क्याबला रेम्बो कोलेदेन मृङकोला छेनिकला आनन्द याङला हेनी नुङसी विषम तर लानन आजबा निना हिम्बा बिसी ओन्मुला 1 तिमोथी 6:9 तर फ्युको दोबरी माइबा मिगदेचा थेनी गदेला सेमरी खबा आजेबा तामदेन नोङमा सेमसे लामा थेनी गदे फसब तला चु जम्मन म्राङमा ताम गदेसे थेनी गदेदा नरगरी दोना लला जब सैतान रि म्राङमुला कि रङ टाङ्गा याङबरी आकर्षित मुसुला थेसे रङ द थेरङमा ग्लारी बोरबरी हाम्ला जहाँ रङ लानन टाङ्गा याङबरी हाम्सुला देन चुसे रङ द रङसे सेमवाला आनन्द ग्लुबरी अनुमति पिन्ना यद्यपि चु ग्याम से राङ्द यीशु ख्रीष्ट
0: टाइम चेक इट्स 7 PM
2: साँझको 7 बजेको छ।

माछाले नि टेढ हताश लाएन बिचरा मेरो पुरो सञ्चोनामा, माछाले नि टेढ हताश लाएन, औलो खायो अरू के खाइरहेको थियो बहिनीको औला, त्यति बेलै हाम फाल्दियो दाई बहुला।